श्रोता मित्रों, आप समरिया चौकजरती कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM ऊपर या तो www.divorcefm.com ऊपर। अच्छा, बीजो पंजाब आवी गयो छे। शरीर आपड़ू अटपटो वखाणो आ प्रमाणे छे, घर में रहे छे पण घर नथी। शरीर ना, खोटो जवाब छे। हाँ हाँ पाड़ो छो तमे, आत्मा साची वात छे पण खोटो जवाब छे। आप सांभ्या छो गीतमाला 102.8 FM ऊपर या तो www.divorcefm.com ऊपर।